0: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: फिल्म इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: पैसे
1: क्या कर रही है तेरे भी आगे दौलत
2: कौन
0: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है

0: 71 र 98067672।
1: समिति चौदह के में बोधे लोटी पर्दी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
2: खै खै बहु कोई लोटरी भर दिलवा
3: आंगी समी जो लोटरी पर दिन छापताई गुरी
2: भर दी आ भर दी लोटरी खाले पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबई बनी वित्तीय संस्थे कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ बैंक रखी जन हिजरी जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैभरिलाई।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम

0: समीचो चौदह के में बोधे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खातर खाई हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
2: आंगी समीचो लोटी पर दियो छांता ही गुदी
1: बढ़ दी आ बढ़ दी बल लोटर खाली पर दिम बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
5: घर बनाउने त भनियो ठेकेदार साहब तर निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने हो बजारमा धेरै हार्डवेयरहरू छन् अलि गुणस्तरीय सामग्री पाइने विश्वासिलो हार्डवेयर चाहिँ कुन होला है
6: अब धेरैजनाले खोज्ने गरेको त बेसीसार साथमा रहेको हिमालयन ब्रदर ग्रुपद्वारा सञ्चालित हार्डवेयर तथा कारखाना नै हो दिदी फेरि त्यहाँ त विभिन्न निर्माण योजनाहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि तपाईँ पनि त्यही जानुहोस् न
7: हाम्रा सेवाहरू एमएस पाइप फलाम आल्मुनियम स्टीलका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै ट्रस ग्रिल सटर आल्मुनियम पार्टिसन र स्टील रेलिङका कार्यहरू दक्ष एवं अनुभवी कालीगढद्वारा प्रत्यक्ष निगरानीमा जडान गरिन्छ गुणस्तरीय छड सिमेन्ट इटा रंगरोगन लगायत भवन निर्माणका सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ
5: हिमालयन ब्रदर ग्रुप प्राली बेसीसर नगरपालिका साथ युनिभर्सल चोक लमसुङ थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0665209773 मोबाइल 97463 06501
6: तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना